0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana jua.
1: Ladies and gentlemen, oh, forget it. It's Bollywood.
2: मुझे खींच रही अनजानी डोर, बस तेरी ओर, बस तेरी ओर।